दयाल कृपा करे ता सारी कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मनिया होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मन हो जिंदिया सो फल पाए सी तांगर के पैंदा जाए सी।

तेट तो तिका खाई हाथ छुरी जगत का सार। नील बस्त पैर वे प्राण ले ताले पूजे प्राण। अपाखे आका कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना। देखा चौंका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया। मत पिटे वे मत पिटे अन्य साडा।

0: पानी जियो है जिथरिया सपोए सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवेर सोए नानक सूतक क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे तो महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चकर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिज तेर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत षाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई हों अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा चोर जार जुआर हों पार कर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास काती अकिरत कान मैं को न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बखसंदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे न जाए ओहो अवनासी पुरख है सब में रहया समाए बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन माने परतख गुरु निसतारे दर्शन प्यासी दिन सुरात चित्त बो

सुकह टल गुर सेवियन एहन ससहज सुभाय। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय। हो

पातश मल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही है।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा। हम अंधले को गोरे अंचल दीजे जन नानक चल है मिलंथा। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जैत सरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सत।

गए मसकत का नानक ते मुखे जिले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

करतबा रंग बिरंग ने ना जापन करतबा जिया इंद्र जी सब कुछ जानला सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला।

माता तहत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी।

गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृपता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जिन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा हर हर जियो परया, सैल पत्थर मह जंतो पाए, ताका रिजक आग कर धरया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की धरया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भौ करया। ऊडे ऊडे आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे शरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सि

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन

छोते अपराध करत है जेते, जननी चीतना राखस तेते, रामैया हों बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा, जे अत करोप करे कर ताया, ता भी चीतना राखस माया, चिंत पवन मन पर्यो हमारा, नाम बिना कैसे उतर सपारा, देहे विमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवे कबीरा, दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ, ज्ञान ध्यान किश कर्म न जान, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए, दर्शन प्यासी दिन सरात, चित बहु अन दिन नीत, खोल कपट गुर मिलिया,

कै जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहांदे

हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै फूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एकी उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई, सुकहु टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सोभाए, दर्शन परसै गुरु कै जनमा

वाहे गुरु जी, तुझे आ गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई।

एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाय। निमाण्यों के मान, निताण्यों के तान, नेओट्यों की ओट, न्यासरयों के आसरा, तन तन श्री गुरु रामदास जीओ महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ

0: पहले के लिखे टूंडे सराजे की तुनी सलोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जी सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इते चानन होंदिया गुर बिन कोर अंधार महला पहला
1: नानक गुरु ना चेतनी मन आपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक सोना फलिए फुलिए बपड़े पीतन वेच सोआ पौड़िया पिने अपसा।

0: चित चितवां अरदास कहूं पर कह भी ना सकूं। सर्व चिन तुझ पास साथ संगत हो तको, तेरे हुक्म पवे निशां तो करो साहब की सेवा। जब गुर देखे शुभ दिस नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं। गुरु अमरदास कारण करना जीव तो रखे तिव रहूं। गुरु अमरदास कारण करना जीव तो रखे तिव रहूं।
1: गुर ज्ञान अर ध्यान तत् सो तत् मिलावे, सच सच जानिए एक चित्ते लिव लावे। काम क्रोध वश करे पवन उडंत न तावे। निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ विचार पावे। कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो। गुर मिल्यो सोए पिखा कहे सहज रंग दर्शन दियो। अजय गंग जल टल सिख संगत सब नावे। नित प्राण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो। गुर अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर कुर गुर रामदास हर पै कयो। हर वंश जगत जस संचर्यो सो कवन कहे सिरे गुर मोयो।
2: तेह जन जाचो जगत पर जानियत बासुर रहन बास जाको हित नाम स्यों। परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगयो। बासना तै बाहर पै देखियत धाम स्यों। अपर परंपर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो। बिन भगवंत रस नाही।

सो जागे और न जाहे महातम मैं, अवतार उजागर यान कियो, तिनके दुख कोटिक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो, एह पद्धित ते मत चूके रे मन, भेद विभेद न जान बियो।

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूरे अरसहु कुरसहु चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहा दैसाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाह सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दैसाह।

जन्म जन्म के किल बेख दुख उतारे, गुर नाम दियो रेन लाथा, मेरे मान पाज राम नाम सब अर्था। गुर पूरा हर नाम दृढ़ाया, बिन नाव जीवन बिरथा, रहा

हम अंदोले काओ गोर अंचल दीजा जान नानक चल है मिलन था हम अंदोले ज्ञानहीन अज्ञानी

आया बिंद्रा बन में रंग किया, कल मैं वेद अथर्वण हुआ, नाव खुदाई अलहो भया, नील बस्तर ले कपड़े पहरे, तुर्क ठाणी अमल किया। चारे वेद होए सचियार, पढ़े गुणे तिन चार विचार, पाओ भगत कर नीच सदाए, तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी।

0: शीश नवाए क्या थी है जर दर सुदे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिलपू जिस बगल समादं मुख चूट बिपु खंसारं त्रैपाल तिहाल बिचारं गलमाला तिलकले लाटं दोए तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चौ कर्मं।